समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: मध्यान्ह ठीक 10 बजे स्थान दरबार पार्टी प्यालेस भीमेश्वर नगर पालिक को भवन सात बाटो चरीकोट दोलखा।
1: नोट, उपस्थित हुन शेर सदस्य अनिवार्य रूप में संस्थाले उपलब्ध कराएको पासबुक लिएर आउनुहोला। साथ ही 2083 असार मशांत सम्म को बचत तथा ऋण को किस्ता नियमित नहुने शेर सदस्य खाजा खर्च उपलब्ध कराइने छैन।
0: स्वर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चरीकोट दोलखा।

0: Dangle, dangle.
1: माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे
2: दंगल दंगल।

0: यार इतने रास्तों में कहाँ जाऊंगी?
1: I don't know.
0: देख अकेली लड़की अनजान शहर कुछ हो गया.
1: अच्छा देख बैठ, एक ही शेयर करना पड़ेगा.

को मन में बस्ने सफल गीत अब त पागल भई इन्सुहोला मको अपार सफलता पछि उनै युगल जोड़ी रामु खड़का को संगीत चर्चित मोडल विमल अधिकारी को शब्द रचना अनि लोकप्रिय गायक मोहन खड़का र शर्मिला गुरुङ को आवाज में अस्मिता सुवेदी को तीज विशेष कोशैली अहिले को तीज में पीर पर्या भावना म्यूजिक सोल्यूशन द्वारा सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ। टीआरबीटी 6045 75 07 मलेसिया को लागि डीजी 0 45 51 99 दुबई को लागि ड्यू 46 43 740 46 43 740। यदि तपाईहरु म्यूजिक भिडियो निर्माण म्यूजिक भिडियो में अभिनय गर्न चाहने तथा गीत संगीत रेकर्ड गर्नको लागि कुनै कम्पनी को खोजी में हुनुहुन्छ भने आफ्नै मन मुटु में बस्न सफल भावना म्यूजिक सोल्यूशन लाई सम्झन सक्नुहुनेछ। फोन नंबर 98491 50 60 1। साथी भावना म्यूजिक का उत्कृष्ट म्यूजिक भिडियो लोक तथा आधुनिक म्यूजिक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने भावना म्यूजिक को यूट्यूब चैनल में गई

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।
1: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।